0: जानकारी गराउँदछौ।
1: सम्पर्क गुरुङ हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, गुरुङ मेडिकल हल, मंगलगढ़ी चोक, सुर्खेत। फोन नम्बर 083-522-148 र 520-702।
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 92.7 मेगाहर्ज।

0: प्यार का ड्यूएट गाते गाते जब हीरो हीरोइन ऐसे लॉन्ग शॉट में चलने लगे तो समझ लीजिए लव स्टोरी खत्म, दी एंड, और जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू, सगाई।
1: Yo, listen out there! For all you people in love, check out this one!

0: ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
1: ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
0: ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
2: कबूल है।

रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला रात्रिको 9 बजेको छ।